आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नज़दीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Jeevan se bhari teri aankhein,

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। डांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ,

0: जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना। ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। वी प्राइड आवरसेल्व्स इन प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट सर्विस।
4: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
5: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
4: अच्छा, वो क्या?
5: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
4: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
5: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
6: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
7: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
8: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
7: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
8: अरे, उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
7: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
8: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
7: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
8: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
9: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं,

पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।

0: अय्या सूकू सूकू
1: अय्या करूं मैं क्या सूकू सूकू।

0: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी पे।
7: To everyone tuning in to Radio Biswani, this is Shah Rukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan, and you are listening to Radio Biswani.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल.

0: मजा नहीं आया?
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: madam. I am your only Adam.
1: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है,

मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ।

0: जल्दी चलो, लेट हो गए। ले भाई चाबी।
1: सर ऑन स्टेज 5 मिनट।
0: ओके तुम आ रही हो?
1: मैं जाऊं।
0: लगता रूम में रह गए।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूब ऑफ 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटाशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506। 3279-2506।

हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्पानी 79.1 किलोहर्ट्ज़ पर, हमारे स्टूडियो 17 मास रॉक्स ब्रिस्बेन से. हमारे स्टूडियोज के घड़ी में एक मिनट हो गए हैं 1:00.

स्वागत है आप सभी का जो आज रेडियो विश्वानी सुन रहे हैं। जो लोग आज हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका स्वागत है। रेडियो ब्रिस्बेन 24/7 आप सुन सकते हैं हमारे स्टूडियो 17 मास रॉक्स ब्रिस्बेन से। और आज आपके साथ सु अभी से लेकर ठीक 3 बजे तक साथ है हमारा आपका एक बहुत प्यारा सा सफर शनिवार मस्ती म्यूजिक पर। बड़ी मस्ती भरी प्रोग्राम लेकर हम उपस्थित हुए हैं दोस्तों। कुछ आपकी रिक्वेस्ट है और कुछ हमारी है, जो लेटेस्ट ज्यादातर है क्योंकि ये मस्ती भरा प्रोग्राम है। और हम ये कहना चाहते हैं कि आज के दिन के लिए सूरज की किरणें आपको हौसला दें। खिलते हुए फूल जो है आपको मुस्कान दे। हम तो बस दुआ करते हैं सभी आपके लिए कि हर सुबह आपको ढेर सारी सी खुशियां दे।

जी हाँ, अगर आज आपकी शादी की सालगिरह है, आपकी जन्मदिन है, कुछ भी है, आज आपकी खुशियां हैं आपके पास, रेडियो ब्रिजवाणी के साथ आप शेयर कर सकते हैं 3279-1701 पर, नहीं तो आप हमारे मोबाइल पर SMS करें। आई होप एवरीवन एंजॉयिंग अ ब्यूटीफुल वीकेंड आउट देयर। हैप्पी सैटरडे। और हमारे पास आज एक बड़े अनाउंसमेंट आई है, तो इसका इंतजार आपको करना पड़ेगा।

वेलकम करते हैं दोस्तों, रेडियो ब्रिज पानी की हवा चली फिल्म बगबान से लिया हुआ गीत आपने सुना है। शनिवार मस्ती म्यूजिक रेडियो ब्रिज पानी अयाम और साथ ही आपका सुका। ठीक 9 मिनट हो गए हैं हमारे स्टूडियोज में ब्रिस्बेन टाइम 1:00। चलते हैं आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम का अगला गीत और उसके बाद हम लाएंगे। बहुत से लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन, आपकी फरमाइश हम लेकर आने वाले हैं।

का नाम दिल ने फिर याद किया पर्दे पर गोविंदा तब्बू के लिए दुपट्टा संभाल के रेडियो विस्पानी आई एम आप सुन रहे हैं है शनिवार मस्ती म्यूजिक।

चले हैं दोस्तों, बहुत समय नहीं लेते हुए हम लेकर आ रहे हैं फरमाइशी प्रोग्राम। आज हमारे पास एक बर्थडे अनाउंसमेंट भी है, बहुत कुछ है। जैसे आपको पता है कि आज हमारे फिजी वालों का गिरमिट डे भी है, वीक भर से आई थिंक इस गिरमिट फेस्टिवल चल रही है। इट्स अ बिट ऑफ इमोशनल फॉर फिजी पीपल, तो इसलिए कुछ गिरमिट सॉन्ग भी आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ सुन सकते हैं। अगर आप गिरमिट वालों को भी याद करना चाहते हैं उन दिनों में जिन्होंने आज हमारे फिजी को ब्यूटिफुल खूबसूरत एक देश बनाया, आप उस पर भी कोई गीत आपके पास है तो आप फरमाइश कर सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं लेस वेगस की ओर। हमारे साथ शामिल हो गई है दक्षा सोलंकी। हाय दक्षा, चलते हैं आपके लिए आज का पहला फरमाइश।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग और हमारे साथ शामिल हो गई थी वहाँ लेस वेगस में हमें सुन रही है दक्षा सोलंकी। दक्षा थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365। दैट्स 3273-7365 और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
10: से। To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी। इस वक्त दोस्तों 21 मिनट हो गए हैं हमारे स्टूडियोज में। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो ब्रिसवानी 1701। साथ ही हमारा आपका ठीक 3 बजे तक चलते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि आज हमारे फिजी वालों का बहुत ही प्यारा सा दिन है, गिरमिट डे है, जो फिजी भर में गिरमिट सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तो हर साल आप जैसे हमारा प्रोग्राम में सुनते हैं, मैं कुछ ना कुछ गिरमिट पर लेकर आती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास अभी कुछ नहीं। शायद टुमारो कुछ गिरमिट पर कहानी मैं जरूर लेकर आने वाली हूँ। फिलहाल गिरमिट पर एक बहुत प्यारा सा फिजी सॉन्ग सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान। चलते हैं दोस्तों दूसरी रिक्वेस्ट की ओर हम बढ़ते हैं। और कैलिफोर्निया यूएसए से रोहितेश, जो आज लोटो काफी जी में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। रोहितेश स्वागत है, वेलकम ऑन रेडियो विश्वानी शो। और रेडियो विश्वानी आप कैलिफोर्निया भी हमें सुन सकते हैं। तो देखिए कि रोहितेश ने जो अगला गीत की डेडिकेट किया है फॉर समवन वेरी स्पेशल लिसनिंग इन बा, दैट्स पिंकी। पिंकी क्या आप सुन रही हैं, आपके लिए ब्यूटीफुल डेडिकेशन है फ्रॉम रोहितेश कैलिफोर्निया यूएसए, जो लोटो काफी जी में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं।

0: बहुत ही रोमांटिक हो रहे हैं मेरे ख्याल से रोहितेश फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए जो इस वक्त हमें लोटो का फिजी में सुन रहे हैं और इस गीत को उन्होंने डेडिकेट किया था पिंकी के लिए फ्रॉम बा. आप सुन रहे हैं रेडियो विजवानी.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल सीईसी अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896. दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: रेडियो फिस्पानी आई एम दोस्तों, शनिवार मस्ती म्यूजिक और इस सफर पर आपके साथ सुशामिल हो गए हमारे साथ स्काबरा रेडक्लिफ से ब्रिज और शैली कुमार। आप दोनों की पसंद पर सुनते हैं अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज।

बहुत प्यारा सा गीत महेंद्र कपूर की आवाज में आपने सुना, फिल्म धुन से लिया हुआ गीत जिसकी फरमाइश आई थी हमारे पास स्काबरा रेडक्लिफ से ब्रिज और शैली कुमार की ओर से। फॉरेस्ट लेक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जहां पर हमें सुन रहे फॉरेस्ट लेक में मिस्टर एंड मिसेस सेतराम, आप दोनों के लिए अगला गीत। इस गीत के बाद हम लाएंगे आज के बर्थडे अनाउंसमेंट।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग रफी साहब की आवाज का गीत आपने सुना और इसकी फरमाइश करने वाले थे फॉरेस्ट लेक से मिस्टर एंड मिसेस अर्षित राम।
1: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्षाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्षाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्षाद फ्रॉम अर्षाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विश्वानी 1701। दोस्तों, चलते हैं वादे के मुताबिक। हम लेकर आ रहे हैं आज के बर्थडे अनाउंसमेंट। हम चलते हैं लोगन सेंट्रल की ओर, और लोगन सेंट्रल में अरुण कुमार आज अपनी 80th बर्थडे मना रही है। माइलस्टोन 80th, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अरुण जी, आपको आज बहुत सारे से लोग, फैमिली मेम्बर्स याद किया है और दोस्तों ने भी याद किया है। और मैसेज हमारे पास आई है सैक्रामेंटो यूएसए से, सूजी नारायण की ओर से, आपकी कजन की ओर से, उनके परिवार की ओर से आपको बहुत सारे से बधाइयां, दुआएं भेज रही है वहां सैक्रामेंटो यूएसए से। और साथ साथ में यहां लोगनली से, लोगन सेंट्रल से नंद कुमार एन, उनके परिवार की ओर से भी आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं। साथ साथ में जिम्बुम्बा से सोनिया एन, उनके परिवार की ओर से जोनी एंड सविता फ्रॉम खेड्रोन पार्क सेंडिंग यू द बेस्ट विशेस ऑन योर बर्थडे। हम यही कहना चाहते हैं कि may you have the right to every happiness, may your journey be filled with joy, may your sorrow will turn back, और हो पूरे दिल की हर ख्वाहिश आपकी, और मिले ख्वाहिशों का सजा आपको, सॉरी आपको खुशियों का जहां आपको, अगर आप मांगे आसमां एक तारा तो खुदा दे दे आपको सारा आसपा। हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हम यही कहना चाहते हैं कि दिन आपके जिंदगी में बार बार बार बार बार बार आए, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी 80th बर्थडे टू यू। चलते हैं आपके लिए एक बहुत प्यारा सा बर्थडे सॉन्ग सुनते हैं।

happy birthday to Arun Kumar of Logan Central. दोस्तों एक बार फिर हम चलते हैं लोगन सेंट्रल की ओर, जहां पर आज अरुण कुमार जी अपनी 80th बर्थडे मना रहे हैं। अरुण जी आपको याद करने वाले हैं, यानी कि आपको वहां से ऑल द वे फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए से याद किया है सूजी नारायण और उनके परिवार, और साथ साथ में यहां लोगन से लोगन सेंट्रल से नंद कुमार एंड फैमिली और सोनिया एंड उनके परिवार फ्रॉम जिम्बुम्बा से, केडरन पार्क से जोनी एंड सविता विशिंग अ वेरी वेरी बेस्ट हैप्पी 80th। हम चलते हैं शिकागो की ओर दोस्तों। शिकागो से फरमाइश है हमारे पास आमला सिंह की ओर से आशा जी की आवाज़ का गीत आपकी फरमाइश पर सुनते हैं।

0: जी।
1: आशा जी की आवाज का गीत शिकागो से फरमाइश आई थी हमारे पास अमला सिंह की ओर से।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270304111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें

0: कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Green Acres Sydney ki aur barhte hai dosto, jahan se hamare paas farmaish hai hai Sydney se Rajino Malti Prasad ki aur se aap dono ke liye agla geet jo hai kabhi kabhi mere dil mein khayal aata hai, isi aap sunne ja rahe hain latest beats par.

संस्कृत में हमारे साथ जुड़ गए थे रजन मालती प्रसाद फ्रॉम सिडनी, और हम चलते हैं सैक्रामेंटो यूएसए की ओर। ललिता गौतम आप सुन रही है वहां पर, और आप सुनना चाहती है जगजीत सिंह चित्र सिंह की आवाज का अगला गजल। आपके लिए पेश है जगजीत सिंह।

0: ब्यूटीफुल गजल आपने सुना जगजीत सिंह चित्रा सिंह की आवाज में, जिसे फरमाइश करने वाली थी ललिता गौतम फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी। दोस्तों हमारे स्टूडियोज में 9 मिनट हो गए हैं इस वक्त 2:00, साथ ही हमारा आपका 3 बजे तक है शनिवार मस्ती म्यूजिक रेडियो विश्वानी। आई एम आपके साथ सो। और रिश्ते की बात किया जाए दोस्तों, रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। इसीलिए चलते रहिए और रिश्ते भी निभाते रहिए। खुशियां तो चंदन की तरह होती है ना दोस्तों, दूसरे के माथे पर लगाओ तो अपनी उंगलियां भी महक जाती है। हम चलते हैं अगली गीत की ओर बढ़ते हैं 8 Months Plans के, और एक बार फिर अल्पना हमारे साथ शामिल हो गई है। और अल्पना ने अगले गीत को डेडिकेट किया है फॉर ए ब्यूटीफुल मम मीना के लिए।
1: उसमें फिर मिलाई जाए

शोख में घोला चाय किशोर लता की आवाज का ब्यूटीफुल सॉन्ग और फरमाइश आई थी हमारे पास इन्हें डेडिकेशन आई थी अल्पना की ओर से फ्रॉम 8 months प्लेन्स फॉर हर मॉम जो हमें सुन रही है मेरे ख्याल से लोगन में मीना के लिए. चलते हैं जिलमिया की ओर बढ़ते हैं दोस्तों. जिलमिया से हमारे साथ कौन शामिल हो गए माला इन विजय आप दोनों के लिए अगला गीत.

हमारे साथ शामिल हो गए थे इस गीत में माला एंड विजय जो हमें सुन रहे हैं जिलमिया में। दोस्तों चलते हैं कैलिफोर्निया यूएसए। मैक्स प्रसाद वहां से हमारे साथ जुड़े। हाय मैक्स, आपके लिए लेटेस्ट।

0: रिमिक्स बीच पर इस गीत को आपने सुना जुगनी जुगनी। हमारे साथ शामिल हुए थे मैक्स प्रसाद फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान। और दोस्तों, बस हाफ एन आवर और बचा है हमारा प्रोग्राम समाप्त होने में। अगर आपके शादी की सालगिरह है, जन्मदिन भी कुछ है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं रेडियो विश्वानी पर। और आज नहीं तो कल भी है, तो टुमारो आई विल बी ऑन अगेन फ्रॉम 2:30।
1: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
2: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
2: गो फॉर द बेस्ट विरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: चलते हैं केड्रोन पार्क की ओर बढ़ते हैं। और केड्रोन पार्क से इस वक्त हमारे साथ शामिल हो गए हैं जोनी और सविता। आप दोनों के लिए अगला गीत लेटेस्ट रिमिक्स पर। शनिवार मस्ती म्यूजिक राइट विस्पानी।

गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे जोनी सविता फ्रॉम कैटरन पार्क, फॉरेस्ट लाइक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गजल की फरमाइश है हमारे पास और इसको फरमाइश किया है फॉरेस्ट लाइक से हाफिज अली खान और जबीदा खान।

गसल की फरमाइश करने वाले थे फॉरेस्ट लेक से हाफिज अली खान और जबेदा खान। जिम बुम्बा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, फरमाइश है हमारे पास जिम बुम्बा से सोनिया की ओर से। सोनिया आपके भी लिए लेटेस्ट रिमिक्स पर सुनते हैं अगला गीत।

सो इस गीत को फरमाइश करने वाली थी सोनिया फ्रॉम जिम बुम्बा. चलते हैं आगे बढ़ते हैं मेनली वेस्ट की ओर. इस वक्त हमारे साथ शामिल हो गई लक्ष्मी फ्रॉम मेनली वेस्ट. आपके लिए भी लेटेस्ट बीट्स पर सुनते हैं हरी रमा हरे कृष्णा का गीत.

बात पर संगीत लक्ष्मी ने से फरमाइश किया था जो हमें सुन रहे हैं मॉर्निंग साइड में मेनली वेस्ट में। तो दोस्तों बस इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में 3:15 बज चुके हैं, साथ हमारा आपका ठीक 3 बजे तक है। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्पानी आई एम।

चलते हैं दोस्तों अगली गीत की फरमाइश है हमारे पास, हम चलते हैं मेलबर्न की ओर। मेलबर्न से फरमाइश है हमारे पास एल्फ्रेड और किरण प्रसाद की ओर से आप दोनों के लिए मिक्स बीट्स पर। अगला गीत जो है बहुत प्यारा गीत है, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा।

और शामिल हो गए थे जरूर दोस्तों हमारे साथ, हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं मेलबर्न में अल्फ्रेड एंड किरण प्रसाद। आज का हमारा आखिरी गीत है, आखिरी गीत आप सभी के लिए है जो आज रेडियो विश्वाणी सुन रहे हैं।

साथ साथ दोस्तों हम आपसे यही अलविदा ले रहे हैं। हमारा आपका साथ आज यहीं तक था। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू एवरी वन फॉर योर ब्यूटिफुल फीडबैक आर देयर। रियली अप्रिशिएट दैट। एक बार फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी कल यानी कि संडे सफर पर 2:30 से। तो जॉइन मी टुमारो फ्रॉम 2:30 ऑन शाम का सफर। Have a nice afternoon. Namaste. Khuda hafiz. Take care. Love you all. Goodbye.

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उत्ते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365। इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर।

सैटरडे ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है या हफ्ते का सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा दिन है जिसके याद आते ही आप पूरी एनर्जी से भर जाते हैं। सैटरडे के याद आते ही आपको याद आता है वीकेंड, और वीकेंड अगर आपको मंडे को भी याद आ जाए या ट्यूसडे को भी याद आ जाए, तो आप कितने भी बिजी हो आपको एक नई एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि ये पावर आपको देता है कि भाई बस 5 दिन काम और कर लो उसके बाद वीकेंड आ जाएगा, बस 4 दिन काम और कर लो फिर वीकेंड ही वीकेंड है, 2 दिन बस, 2 ही दिन तो रह गए हैं सैटरडे आने में, है ना। तो ये वाली जो फीलिंग है इसके साथ आप एक नई एनर्जी से भर जाते हैं, और उसी एनर्जी को आज आप फील कर पा रहे हो।

क्योंकि आज है सैटरडे और इस वक्त वो एनर्जी और भी खास हो गई है क्योंकि ये है आपका सैटरडे डिलाइट। तो चलिए फिर एक नए सफर पर अपने वीकेंड को और भी खास बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी, बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट सिर्फ और सिर्फ, जी हाँ, रेडियो ब्रिस्वानी पर इस अगले ट्रैक के साथ।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट सताक्षी के साथ, और एक और वीकेंड पर सताक्षी आज आपका साथ दे रही है। आज कुछ ऐसे प्लेलिस्ट में गाने मेरी हैं जो आपके इस वीकेंड को और भी खास बना रहे हैं, स्पेशल बना रहे हैं। वैसे वीकेंड्स जब भी शुरू होते हैं, सैटरडे जब भी आता है, यानी सैटरडे डिलाइट स्पेशली हम जब भी लेकर आते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपसे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर सकें। भाई ये वो टाइम होता है जो हमें पूरे हफ्ते नहीं मिलता आपके साथ किसी भी प्रोग्राम में, लेकिन सैटरडे डिलाइट एक ऐसा प्रोग्राम है जब हमें पता है कि आप भी उतने बिजी नहीं है, आज आप लाइट फील कर रहे हैं और हम भी एक लाइट से मूड में है। मतलब बहुत ज्यादा लेक्चर देने का मन नहीं होता, बहुत ज्यादा जिंदगी को समझने का मन नहीं होता, बस अपने साथ और अपनों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताने का ये वक्त होता है, राइट। सो चलिए इस वक्त को और भी खास बनाते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। के प्लस इंटू रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं सैटरडे डिलाइट।

0: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
1: सैटरडे डिलाइट, जी हाँ, इसी सफर को सताक्षी के साथ इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। ये वीकेंड वाले पल हैं जो इस वक्त सताक्षी के साथ और भी खूबसूरत हो रहे हैं। ये वीकेंड वाला एहसास है जिसे हम और भी एहसास से भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए फिलहाल आपको लेकर चलते हैं आगे एक और गाने के साथ। अभी इसे सुनिए और मेरे साथियों ही सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट।

सैटरडे ना मुझे लगता है एक चीज के लिए और भी बहुत बहुत यूजफुल होता है, और वो है शुक्रिया। जी हाँ, और शुक्रिया किसी और को नहीं बल्कि उस इंसान को जिसने आपकी जिंदगी में आकर उसे जिंदगी बना दिया, जिसने जिंदगी के हर कदम पे आपका साथ दिया, और जिसने प्यार को बहुत ही प्यार से निभाया, उस इंसान को शुक्रिया कहने के लिए वीकेंड का ये दिन सैटरडे बहुत ही खास दिन है। और ये शुक्रिया कहने के आप सबके अलग अलग तरीके होंगे, थैंक यू कहने का आपका सबका एक अलग नजरिया होगा। कोई आज उन्हें कॉफी डेट पर लेकर जा सकता है, कोई शॉपिंग करवा सकता है, कोई साथ में टाइम बिता सकता है। किस तरह से, किस अंदाज में आपको ये वक्त जीना है, किस अंदाज में आपको अपने सैटरडे को शुक्रिया वाले, थैंक यू वाले सैटरडे को अपने लिए, इनफैक्ट दोनों के लिए और भी खास बनाना है, डिपेंड्स ऑन यू, बट बनाइए जरूर, ठीक है जी, ताकि सामने वाले को भी ये महसूस हो कि जिस इंसान से उसने मोहब्बत की है या जिस इंसान की उसने इतनी परवाह की है, वो उसके वो एफर्ट समझता भी है और पहचानता भी है। चलिए आइए मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ एक और ट्रैक के साथ, इसे एंजॉय कीजिए और मेरे साथ एंजॉय करते रहिए सैटरडे डिलाइट ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 FM।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अ टन वीरे, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: डोंट रिस्क योर लाइफ, टॉक टू अतुल बिफोर यू टॉक टू पुलिस। अज्जी कॉन्टैक्ट करो अतुल जी नो ऑन 0400-234-235, दैट इज 0400-234-235।
2: सदाक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट। जी हाँ, सैटरडे का ये खास और खूबसूरत सफर सैटरडे डिलाइट इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर, और आपके साथ इस सैटरडे को हम और भी खास और बेहतरीन बना रहे हैं। वैसे हर वीकेंड जो है वो जिंदगी में एक खास मैसेज लेकर आता है, एक खास उम्मीद लेकर आता है, एक खास साथ लेकर आता है। आज भी जरूर मुझे लगता है ये वीकेंड्स हमारे लिए कुछ तो स्पेशल होंगे, है ना। खैर, वीकेंड्स गुजरते गुजरते समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल एक ट्रैक सुनते हैं, एंजॉय कीजिएगा और कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, सताक्षी के साथ सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्रस्वानी पर, यूं ही बने रहे।

सैटरडे डिलाइट सताक्षी के साथ आप यही सफर इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं और सुन रहे हैं। वेल, मैं अपनी रिसेंटली एक फ्रेंड के घर गई, मैरिड है वो, और जब मैं उसके घर पहुंची तो देखा कि भाई मैडम का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, बहुत ज़्यादा मूड खराब है। तो मैंने उसको कहा कि यार क्या हो गया, क्यों इतना मूड ऑफ है? तो बोलती है कि यार पता है, हम दोनों का ना, मतलब उसके हस्बैंड का और उसका सुबह से झगड़ा हुआ है और एक बार भी मनाने नहीं आए। अब मैं कुछ बोलती हूँ, उसके पहले ही बोलने लगी कि पता है सताक्षी, ऐसा थोड़ी ना है, अगर मुझे प्यार से मनाते तो मैं मान जाती, मैं थोड़ी ना नाराज रहूंगी। और हमारे जीजा जी यानी कि उनके हस्बैंड ये बात सुनते सुनते आए और बड़े ही प्यार से बोले, अच्छा सुनो, बस ये सुनना था कि चिल्ला कर बोली, क्या है, जब देखो तब परेशान करते रहते हो। उसके बाद मैं और जीजा जी दोनों बहुत शॉक्ड थे कि भाई ये कैसा मान जाती। हाँ, होती है ना बीपीओ की ऐसी वाली आदत कि भाई उन्हें लगता है कि कोई मनाए, और जब मनाने जाइए तो वो और नखरे दिखाती हैं। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि आप मना लेंगे, आप उनके नखरे उठा लेंगे। भाई देखिए, बीवियाँ जो हैं वो आपके लिए बहुत कुछ करती हैं, बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं लाइफ में आपके लिए। हाँ, तो वो नखरे तो बनते हैं, उठा लीजिए, तो जाइए भाई, अगर गलती है तो भी, और गलती नहीं है तो जरूर सॉरी बोल दीजिए। और सताक्षी के साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट, ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्मानी 1701 AM।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: जी, आपके वीकेंड वाले शो सैटरडे डिलाइट को इस वक्त आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। छुट्टी का दिन, आराम का दिन, कुछ एहसासों का दिन, कुछ खास बातों का दिन और कुछ जज्बातों का दिन, ये सारे पल इस वक्त हम समेट रहे हैं आपके लिए सैटरडे डिलाइट में। चलिए फिलहाल आपको आगे लेकर चलते हैं एक और ट्रैक के साथ। इंजॉय कीजिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ, जी हाँ, आपके वीकेंड वाले शो को।

सैटरडे डिलाइट सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं। और रिसेंटली हमारे मोहल्ले में घर से बड़ी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, मतलब भाभी बड़ा गुस्सा थी। तो भाई हमने जाकर पूछा कि भाई भाभी क्या हो गया, क्यों इतनी नाराजगी, क्यों इतना गुस्सा। तो भैया की तरफ इशारा करके कहती हैं, दुनिया भर का ज्ञान भरा पड़ा है इस आदमी के पास, लेकिन मैं किस बात पे गुस्सा हूँ ये नहीं पता इसे। हाँ, तो भाई लड़कियों की ये प्रॉब्लम भी है कि देखिए नाराज होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और हम किस बात पे नाराज हैं, बात कहाँ से शुरू हुई थी, ये जानना जो है ये हस्बैंड या फिर पार्टनर की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें पता होना चाहिए कि हमें क्या बुरा लगा है। ठीक है जी, ये तो आप पता करते रहिए कि हमें क्या बुरा लगा है, हम तो नाराज रहेंगे। और बस इसी नाराजगी के नाम ये अगला ट्रैक याद आ रहा है, इसे सुनिएगा। और सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए सैटरडे डिलाइट ओनली ऑन रेडियो प्रिस्पानी 107.01।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: So Saturday Delight, जी हाँ, आपके वीकेंड वाले शो को इस वक्त आप सताक्षी के साथ सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर, और आपके वीकेंड्स को आपके लिए खास और बेहतरीन बना रही है सताक्षी। मैं जानती हूँ कि आपका हर एक पल, वीकेंड का हर एक पल जो है वो आपके लिए बहुत अहमियत रखता है और बहुत खास है, इसीलिए इन पलों को और भी शानदार बनाने की मेरी कोशिश जारी है। फिलहाल ये अगला ट्रैक सुनिए एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

अच्छा, आज कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिन्हें इतनी सारी बातें जब हम रोमांस की कर रहे हैं, रिश्तों की कर रहे हैं, तो आपको मन कर रहा होगा कि यार हम भी काश उसके पास होते, लेकिन नहीं जा सकते क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है भाई आपका। तो हाँ, काम के साथ साथ रिश्ता निभाना जरा मुश्किल है। कई बार मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि यार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होती हैं, बहुत झगड़े होते हैं और चलते नहीं है ज्यादा। लेकिन देखिए, ये बात तो सच है कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुश्किल तो होते हैं क्योंकि उसमें ट्रस्ट बनाए रखना बहुत मुश्किल बात है। और अगर एक बंदे पर भरोसा है और आपको मिलने का इंतजार है, उसे एक कॉल का इंतजार है, उसे एक मैसेज का इंतजार है जो रात में आप दोनों की सोने से पहले बात होने वाली है, सो यस, वो इंतजार जो है वही बताता है कि दूर होकर भी कोई सिर्फ आपका है, दूर होकर भी आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं, आप किसी के अपने हैं, है ना। और यही एहसास जो है वो उस रिश्ते को पूरा करता है। सो लॉन्ग

रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि आप किसी बेवफाई के रिश्ते में हैं, बल्कि आप एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते में हो सकते हैं। एक और ट्रैक सुताक्षी के साथ सुनिए और मेरे साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: जी हाँ, सैटरडे डिलाइट इस वक्त आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर, और एंजॉय कर रहे हैं आज इस पल आपके वीकेंड वाले शो में मेरे साथ कुछ बहुत ही प्यारे गाने। तो चलिए इस पल को भी और भी शानदार बनाते हैं आपके लिए इस अगले गीत के साथ। इसे भी सुनिए और मेरे साथ एंजॉय करते रहिए सैटरडे डिलाइट सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी पर।

जिंदगी ना हमेशा हमारे मुताबिक हमारे हिसाब से नहीं चलती है। इस लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं या बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो आपके अगेंस्ट होती हैं। और मैंने देखा है कि लाइफ में जब आप कभी अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपने लिए आप कोई कदम उठाते हैं, तो ये चीजें और भी ज्यादा बदल जाती हैं, ये लोग बदल जाते हैं, ये एहसास बदल जाते हैं, लोग अक्सर आपके खिलाफ हो जाते हैं, सिचुएशंस आपके अगेंस्ट हो जाती हैं या कर दी जाती हैं। और ऐसे में कई बार हमें लगता है कि यार कहीं हम रिश्ता ना खो दें, कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमारे खिलाफ हो जाएं, हमारे अपने ही हमारे खिलाफ हो जाएं, और हम वापस उनके कहे मुताबिक जो वो हमसे करवाना चाहते हैं वही करने लगते हैं, वही समझने लगते हैं। बट देखिए, लाइफ में, जिंदगी में जब भी आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे तो आपको ये झेलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इस बात से खुश हैं कि हम उनके हिसाब से चल रहे हैं, और जब हम अपने लिए आवाज उठाते हैं बुरा लगना लाजमी है, क्योंकि उन्हें आदत नहीं है हमारी आवाज सुनने की। आइए एक और ट्रैक सुनिए सदाक्षी के साथ इसी बात पर, और सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट रेडियो प्रस्थानी 107.01 एफएम पर।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: जी हाँ, सैटरडे का वक्त बहुत ही सुकून भरा है, बहुत ही ताजगी भरा है, और हमारी जिंदगी को ये बता रहा है कि भाई, जिंदगी में सिर्फ भाग दौड़ नहीं है, कुछ हसीन, खूबसूरत और बेहतरीन लम्हे भी हैं, कुछ प्यार के पल हैं, कुछ जिंदगी के पल हैं, और इन्हीं पलों को हम अभी आपके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं रेडियो प्रस्वानी पर। और चलिए इन पलों के साथ एक बढ़िया सा गाना एंजॉय किया जाए। भाई, जब जिंदगी हमारी है, ये खुशनुमा पल हमारे हैं, तो इन पलों के नाम एक ट्रैक तो बनता है। सो कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्वानी, मेरे साथ एंजॉय करते रहिए सैटरडे डिलाइट, और सुनते रहिए कुछ प्यार भरे नगमे, कुछ खूबसूरत नगमे मेरे साथ।
3: पूछो जरा, पूछो मुझे

बिखरा हुआ घर, हाँ फैली हुई चीजें, और इन चीजों को समेटने के लिए बेचारा किस्मत का मारा सैटरडे। मुझे लगता है कि यार कभी कभी ना ये हमारे वीकेंड्स बहुत थकाऊ भी हो जाते हैं, मुझे लगता है थकान डबल भी कर देते हैं कभी कभी, है ना। हाँ क्योंकि भाई इतना सारा काम जो वीक में पूरा फैला के हम रखते हैं कि भाई वीकेंड पे समेटेंगे, अब क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, रोज रोज वक्त मिलता नहीं है, बस भागने की जल्दी, घर आके फिर घर का काम, और उसके बाद में आजकल तो भाई ऑनलाइन ऑफिस का काम हम घर पर भी लेकर आ जाते हैं, और उसके बाद सोना भी तो है, बस थोड़ा सा रेस्ट तो जरूरी है, तो ये काम जो है ये फैला ही रह जाता है, और उसके बाद वीकेंड्स आते हैं और हम लग जाते हैं धीरे धीरे इन कामों को समेटने में। लेकिन देखा जाए तो फिर भी इन वीकेंड में वो थकान नहीं होती जो आपको जनरली रोज होती है, ना तो किसी का प्रेशर है, ना किसी की डांट है, और ना ही भागने की जल्दी है, बस अपने हिसाब से हम अपने कामों को समेटते हैं, धीरे धीरे आराम करते हुए, रिलैक्स करते हुए, कॉफी पीते हुए, इंजॉय करते हुए, अच्छा म्यूजिक सुनते हुए, सताक्षी को सुनते हुए, है ना, और कभी किसी के साथ रोमांटिक पलों को गुजारते हुए, इन पलों को आप जीते हुए भी अपने घर का काम जो है वो समेटते हैं। तो हाँ उसी काम के नाम चलिए फिलहाल ये अगला ट्रैक सुनिए, आपके साथ ये हसीन पल आपकी जिंदगी में यूं ही बने रहे और उन पलों के नाम ही ये गीत। इंजॉय कीजिए और सताक्षी को सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट में, आपके अपने रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM पर।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: वेलकम बैक रेजियो प्रसवानी पर, सताक्षी के साथ इस एक और खूबसूरत गाने के बाद आप हैं। और ये बताइए कि भाई क्या मतलब सुनने में आ रहा है कि अक्सर आप रोते रहते हैं कि शादी करके फंस गए, शादी बुरी चीज है, या हमें तो प्यार करने नहीं चाहिए था, प्यार हमारे लिए था ही नहीं। क्यों क्यों ये सब ऐसा क्यों कहते हैं? मतलब अब प्यार किया था तो भुगतिए, बिना सोचे समझे, बिना किसी को जाने परखे अगर मोहब्बत कर बैठेंगे तो नतीजा यही तो निकलेगा ना। इसीलिए कहते हैं कि रिलेशनशिप में थोड़ा वक्त लेना चाहिए, लेकिन नहीं, अब ये जो वक्त है ये तो भागदौड़ का वक्त है, और कहाँ वक्त है किसी को वक्त देने के लिए। लेकिन बॉस, जब बात जिंदगी की होती है तो वक्त देना पड़ता है। जी हाँ, वो जो आपका बिजी वाला टाइम है उसमें से भी टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि बात आपकी जिंदगी की है, एक रिश्ते की है, एक सच्चे साथी की है, जो जिंदगी भर हर सुख दुख में आपका साथ निभाने वाला है। लेकिन नहीं, आपको तो समझना ही नहीं है, तो भुगतिए, है ना, फिर क्या कर सकते हैं। सोचिए, अभी भी वक्त है, और इस वक्त पर अगर आप समझ लेंगे, जान लेंगे कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपका साथ निभा सकता है, तो पूरी जिंदगी, ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनके पास अभी वक्त है, जिनका वक्त निकल चुका है, जो डिसीजन ले चुके हैं जिंदगी का, उनकी तो एक अलग ही बात है। लेकिन जो अभी डिसीजन ले सकते हैं, जिनके पास वक्त है भागने का उस रिश्ते से, वो अभी भी सोच लीजिए, और सोच समझ के ही जिंदगी में रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी फैसला कीजिए। आइए इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी, और रहिए सताक्षी के साथ।

तो दोस्तों ये था एक और सैटरडे डिलाइट पर सताक्षी का आपके साथ साथ। जी हाँ, आज अपने वीकेंड्स को हमने खास बनाया, स्पेशल बनाया, खूबसूरत बनाया और इस साथ को, इस टाइम को अपना ऐसा क्वालिटी टाइम बना दिया जो आने वाले हफ्ते, आने वाले सैटरडे तक, यानी आने वाले अगले वीकेंड्स तक हमें एनर्जी देता रहेगा। तो इस वीकेंड से, इस वीकेंड शो से आज सताक्षी लेगी इजाजत, यानी कि सैटरडे डिलाइट से आज लेगी इजाजत सताक्षी, और इस वादे के साथ आज जा रही हूँ कि कल एक नए शो के साथ फिर से मिलूंगी आपसे। तो चलिए कल मिलने के वादे के साथ अब ये लास्ट ट्रैक आपके लिए है, इसे सुनिए, एंजॉय कीजिए और इसमें खोए रहिए अपनों के साथ। इस कीमती वक्त को, इस कीमती वीकेंड को स्पेंड करते रहिए ताकि इस एनर्जी को आप आने वाले वीक में फील कर सके। नमस्कार।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
4: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
5: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
4: ऐसा क्या खास है वहाँ?
5: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
4: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
5: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
6: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
7: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
6: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
7: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
6: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bin Coin. Save, spend or donate your Bin Coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge,

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
4: Ek ladki thi deewani si. एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 04209331 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 04209331. वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
4: In providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Home.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is
5: 0400-234-235.
6: कह दूँ तुम्हें, हाँ, या चुप रहूँ? ना, दिल में मेरे आज क्या है?
5: क्या है?

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest?
2: From Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time.

0: एजेंट जॉन लवला ऑन 0404-004-899. यस, इट्स 0404-004-899 एंड कोड वर्ड ब्रिस्वानी. योर न्यू होम वेटिंग फॉर यू इन ऑक्सले, ब्रेकनरिज, मॉगिल एंड सराउंडिंग एरियाज इन ब्रिस्बेन, क्विंसलैंड.
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी. कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी. जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यार, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने।
0: में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे

0: फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
0: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

नाचे नाचे कोई वहां आहा नाचे नाचे सारे हंसी आहा नाचे नाचे।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स। पर लड़की किसी में नहीं मिलती है, ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक स्क्रीन।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves.
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
0: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
2: गो फॉर द बेस्ट विरे, अतुल भारद्वाज जी नो अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नो हैंडल करन जी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Mogill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Mogill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drive.

0: ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दार रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस फैमिली लॉ इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ एंड द बेस्ट पॉइंट दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट
1: थैंक्स अ टन वीरे आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट
0: डोंट रिस्क योर लाइफ टॉक टू अतुल बिफोर यू टॉक टू पुलिस अज्जी कॉन्टैक्ट करो अतुल जी नो ऑन 0400-234-235 That is 0400-234-235.
2: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bin Coin. Save, spend or donate your Bin Coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: कंटेनर्स और चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
4: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
5: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
4: ऐसा क्या खास है वहाँ?
5: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
4: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
5: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
6: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
7: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
6: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
7: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
6: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

राधे श्याम रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। आप सभी को राधे श्याम। रेडियो ब्रिस्वानी पर इस वक्त आप हैं मेरे साथ भक्ति सागर के सफर में। जी हाँ, भक्ति सागर श्रोताओं भक्तजनों वो सफर है जहाँ प्रभु की भक्ति हमें उनसे मिलवाती है, जहाँ प्रभु की भक्ति हम उन पर और भरोसा करना सिखाती है, प्रभु की दी गई शिक्षाएं हमें उनके और करीब लेकर जाती हैं और उनका दिया ज्ञान हमें ज्ञानी बनाता है। तो आइए भक्ति रस से ओतप्रोत होते हैं आज एक बार फिर से भक्ति सागर में रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर, और भक्ति के मार्ग पर आपके साथ मैं भी चलूंगी। जी हाँ, सताक्षी के साथ आप इस सफर में रहेंगे पूरे एक घंटे। तो सुनते रहिए भक्ति सागर और बने रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर।

प्रस्वानी 1701 AM पर भक्ति का सफर भक्ति सागर आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ। अधर्म, अधर्म हमारे आसपास आज के वक्त में बहुत बुरी तरह फैला है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा था ना कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म अपने पैर फैलाता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। और भगवान का अवतार तो शायद अभी बड़े लंबे समय के बाद होगा, लेकिन फिर भी एक चीज है कि अधर्म बहुत लंबे समय तक अपने पैर फैला ही नहीं सकता है। झूठ के पांव ज्यादा लंबे होते नहीं हैं। इंसान का झूठ, मनुष्य का झूठ भी बहुत आसानी से पकड़ा जाता है और शैतान का झूठ भी बहुत लंबा नहीं चल पाता है। और इसीलिए अधर्मियों का विनाश करने के लिए या तो भगवान आते हैं या किसी एक ऐसे को भेजते हैं जो उनका विनाश कर पाए। इसीलिए हमेशा अपने लिए धर्म का मार्ग चुनिए, वो धर्म जो सच्चाई से बना हो, जो ईमानदारी से बना हो और जिसका रास्ता प्रेम से भरा हो। और उसी धर्म के मार्ग पर आइए, आपको आगे लेकर चलते हैं भक्ति सागर में। सुनते रहिए भक्ति सागर रेडियो ब्रिजवाणी पर।

जब भी जिंदगी का कठिन समय आता है, कठिन परिस्थितियां आती हैं, तो हम सहायता के लिए न जाने कितनों के पास जाते हैं। कभी अपनों के पास, कभी भाई बहनों के पास, कभी दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, जहां काम करते हैं उस जगह पर सहायता के लिए हम हर जगह भागते हैं। लेकिन बस सहायता के लिए हम उस ईश्वर को नहीं देखते, उसे नहीं निहारते, उसे नहीं पुकारते, उससे नहीं कहते कि हमारी सहायता करो, हमारी मदद करो। आपको पता है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने सबको पुकारा। उस सभा में जितने लोग बैठे थे उन सबको एक एक कर द्रौपदी ने पुकारा और उन सबसे विनती की कि उसकी लाज बचाएं। लेकिन उस भरी सभा में कोई उठा तक नहीं, यहां तक कि पांचों पांडव भी सिर्फ तमाशा देखते रहे। और तब द्रौपदी ने हार कर भगवान को पुकारा और दुशासन बेहोश हो गया, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण नहीं कर सका। ये है भक्ति और परमात्मा की पावर। जब दोनों मिलते हैं ना, भक्त और परमात्मा, हाँ, तो जो है कुछ तो ऐसा होता है जो सदियों में कभी नहीं हुआ। बस सच्चे दिल से पुकारने की देर है। तो आइए आज हम भी मिलकर पुकारते हैं उन्हें और कहते हैं कि वो हमारे कष्ट दूर करें।

रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं भक्ति सागर। भक्ति सागर वो सागर है, एक ऐसा सागर जिसमें आप जितना गहरे डूबते हैं आप उतना ही ऊपर उठते जाते हैं। भक्ति का रस ऐसा रस है जिसे आप जितना भी पी लें आपको डायबिटीज नहीं होती, लेकिन उसकी मिठास जो है वो आपको ईश्वर से मिलवाने में दो कदम आगे ले जाती है। तो आइए इस मिठास को अपने लबों से लगाते हैं इस अगले गीत के साथ। गुनगुनाइए इसे, झूमिए इस पर और सुनते रहिए भक्ति सागर सताक्षी के साथ।

सेक्रीफाइस, ये शब्द सुनते ही हम सब इससे दूर भागने लगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमें जीवन में प्यार भी चाहिए, कोई एक ऐसा भी चाहिए जो हम सबकी परवाह करे। लेकिन भगवान श्री राम ने अपने जीवन की जो सबसे बड़ी सीख दी है ना श्रोताओं, वो सेक्रीफाइस की दी है। सेक्रीफाइस के बिना आपको इस जीवन में कुछ भी नहीं मिल सकता। जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करना सीखते, तब तक आप ईश्वर से मिलने की चाहत तो छोड़ ही दीजिए। जी हाँ, क्योंकि सेक्रीफाइस करना ही आपको जीवन में आगे लेकर जाता है। और लोग इसी से एक छोटी सी पेंसिल भी अपनी देने से डरते हैं, उसका सेक्रीफाइस भी नहीं कर सकते। और प्रभु राम ने तो अपने राजपाट का सेक्रीफाइस कर दिया। एक रात बाद वो राजा बनने जा रहे थे और रातों रात उन्होंने माँ कैकेयी के आदेश का पालन किया और अयोध्या छोड़ दी। ये होता है सेक्रीफाइस। लेकिन अगर आज हमसे कोई कह दे कि सेक्रीफाइस करो, तो क्या हम कर पाएंगे? क्या हम अपनी उस चीज पर जिस पर हमारा हक है, क्या हम उसे छोड़ पाएंगे? नहीं। लेकिन सही मायनों में सेक्रीफाइस ही वो है जो आपको बहुत कुछ सिखाता भी है और जीवन में महान भी बनाता है। एक और गीत सताक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए भक्ति सागर रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

भक्ति के अनमोल रत्न भक्ति सागर में इस वक्त आप डूब रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो बुला मस्ती पर। जी हाँ, आपकी भक्ति ही आपके ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग को आसान करती है, लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए एक भरोसा होना चाहिए ईश्वर पर, एक विश्वास होना चाहिए कि वो आपको कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा और जीवन पथ पर हमेशा वो आपको आगे लेकर ही चलेगा। आइए उसी भक्ति में डूबते हुए परमपिता परमात्मा परमेश्वर को आवाज लगाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर हम भटकें तो वो हमें थाम लें। सुनते रहिए रेडियो ब्रजवाणी पर भक्ति सागर सताक्षी के साथ।

अक्सर हमें परमात्मा से ये शिकायत रहती है कि वो हमारी किसी भी प्रार्थना का जवाब जल्दी नहीं देते हैं। तो ईश्वर का यही कहना है कि अगर वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब जल्दी दे रहे हैं तो वो हमारे विश्वास को बढ़ा रहे हैं, और अगर वो हमारी प्रार्थनाओं को डिले कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे या उन्हें सुन नहीं रहे हैं, तो वो हमारे पेशेंस को बढ़ा रहे हैं। और अगर वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे ही नहीं रहे हैं तो इसका मतलब वो हमारे लिए कुछ बेहतर तलाश रहे हैं। आप देख लीजिए कि इन तीनों में से आप जिंदगी की किस सिचुएशन में हैं। सुनते रहिए भक्ति सागर सताक्षी के साथ।

भक्तजनों, ये था भक्ति सागर पर हमारा आज का एक और प्यारा सा भक्तिमय सफर, जिसमें आज हम दो कदम तो कम से कम और ईश्वर के करीब आ गए। ईश्वर की भक्ति में यूं ही खोए रहिए, क्योंकि आपके जवाब हो सकता है कि डिले हो रहे हो, लेकिन आपको मिलेंगे जरूर। आपको बेहतर मिलेगा, अच्छा मिलेगा, सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे और आपको सत्मार्ग पर चलाए, इसी मंगल कामना के साथ जय।

0: है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।
1: ये है रेडियो 79.1 ब्रिस्बेन और आपके साथ फिरोज खान। मैं आपका साथ देता हूँ हर रविवार की सुबह 6 से 7 बजे तक। आपके लिए हम पेश करते हैं कुछ चुने हुए डिवोशनल संगीत और 7 से 8 बजे तक हमारा इस्लामिक प्रोग्राम। शुरुआत करते हैं 7 से हम कुछ चुने हुए मजहबी कवालियाँ, नात और हम। उसके बाद हमारा रेगुलर इस्लामिक प्रोग्राम सवाल और जवाब मौलाना फजलदाद के साथ। और हम आपको याद दिला दें हर जुमे के दिन, हर फ्राइडेज को 9 से लेकर 9:30 बजे तक आप सुन सकते हैं आज जुमा है नामक प्रोग्राम, जिसमें हम आपके लिए पेश करते हैं ऑकलैंड न्यूजीलैंड के मौलाना बशीर अहमद दीवान को। फिलहाल कवाली, नज़म और हम्द को आगे बढ़ाते हुए आपको याद दिला दें कि इसके बाद हम आपके लिए पेश करेंगे हमारा रेगुलर सेगमेंट सवाल और जवाब मौलाना फजलदाद के साथ।

ये है रेडियो 79 ब्रिस्बेन और आपके साथ फिरोज खान। 7 से 8 बजे तक हमारा इस्लामिक प्रोग्राम शुरुआत करते हैं। 7 से हम कुछ चुने हुए मजहबी कवालियाँ, नात और हम। उसके बाद हमारा रेगुलर इस्लामिक प्रोग्राम सवाल और जवाब मौलाना फजलदाद के साथ। और हम आपको याद दिला दें, हर जुमे के दिन, हर फ्राइडेज को 9 से लेकर 9:30 बजे तक आप सुन सकते हैं आज जुमा है नामक प्रोग्राम, जिसमें हम आपके लिए पेश करते हैं ऑकलैंड न्यूजीलैंड के मौलाना बशीर अहमद दीवान को। फिलहाल कवाली, नज़म और हम्द को आगे बढ़ाते हुए आपको याद दिला दें कि इसके बाद हम आपके लिए पेश करेंगे हमारा रेगुलर सेगमेंट सवाल और जवाब मौलाना फजलदाद के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे कुछ चुने हुए हमद, नात और कव्वाली, जिसको हम पेश करते हैं हर रविवार की सुबह 7 बजे से। रेडियो ब्रिजवाणी 1701 ब्रिजबन, और हर सप्ते की तरह एक बार फिर आपकी खिदमत में आज सुबह के इस्लामिक प्रोग्राम, और आप सब सुनने वालों को फिरोज खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए वेद

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506, 3279-2506।

जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत रेडियो बिजवानी पर। मैं जतीश पूर्ण आपका साथ हूँ और मैं जानता हूँ बहुत दिनों बाद मैं आ रहा हूँ रविवार का कार्यक्रम लेकर। उम्मीद है आप सुन रहे होंगे दोस्तों, सुबह सुबह आपने सभी धार्मिक प्रोग्राम को सुने हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। रेडियो बिजवानी आपकी अपनी पहचान, आप सुन रहे हैं दोस्तों। नंबर है 04300031701। और चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि हमारा यहाँ ब्रिस्बेन का फोरकास्ट क्या कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिस्बेन के लिए आज का जो फोरकास्ट है, कहा गया है कि आज 50% चांस कुछ है, शायद बारिश हो दोस्तों। और 25 और 18 डिग्रीज आज का जो तापक्रम रहेगा। और आगे क्या है, चलो हम कुछ देर में लेकर आएंगे दोस्तों, क्योंकि मेरा जो कंप्यूटर में कुछ हो गया, जब मैं संडे प्रोग्राम करता हूँ तो कुछ ना कुछ हो जाता है दोस्तों। खैर चलो कोई बात नहीं, फिर भी आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत प्यारा सा गीत मैं चुना हूँ आप सभी के लिए। वैसे तो जितने भी गीत मैं लेकर आया हूँ, उम्मीद है सब आपको पसंद आएंगे, तो चलो सुनते हैं। और इस गीत को गाया है प्रीतम ने, म्यूजिक दिया है, और राहत फतेह अली खां की आवाज में आप सुनेंगे दोस्तों।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो, जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
4: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पीने, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें। सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पीने, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें।

माफी चाहता हूं दोस्तों, थोड़ा सा कुछ यहां पर प्रॉब्लम्स हुआ था, लेकिन चलो उम्मीद है कि आप हमें सही तरह से सुन पा रहे होंगे। जी हां दोस्तों, रेडियो मिज़वानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान। और नंबर है 04300031701। अगर आप भी कुछ सुनना चाहते हैं दोस्तों तो आइए, वी विल वेलकम यू। ठीक है जी हाँ। और आपको बता दो, इस कार्यक्रम के बाद में आप हो जाएंगे फिरोज भाई के साथ, तो कार्यक्रम जरूर सुनिएगा दोस्तों। चलिए अगला जो गीत है, और इस गीत को गाया है नुसरत फतेह अली खान ने।

0: दोस्तों, लगता है कि आज का जो प्रोग्राम है पूरा खिचड़ी बन गया है, क्योंकि मैं आउटसाइड से कर रहा हूं और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है दोस्तों, कभी सब एक एक चीज को याद रखना पड़ता है। और अभिता, गुड मॉर्निंग, नमस्ते,
1: गुड मॉर्निंग,
0: थैंक्स फॉर कॉलिंग एंड लेटिंग मी नो। भाई जी, व्हाट आर यू डूइंग टुडे? आई थिंक रेस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट एंजॉयिंग माय
1: You were trying to mix
0: with the Spotify, and I'm trying to play, and I can't play it here. Yeah. But at the same time, it was going on in the studio, because see, the studio takes over, right?
1: Yeah,
0: that's one thing about Spotify. You know, it's a bit involved. I can't explain, but I think you understand what I'm saying. So you don't hear anything over here, but over there it is playing. You know, yeah. Anyway.
1: I'm sitting outside playing with the dogs, and I had the app on, and then I'm feeling like I could hear two different things going on, and I said, can't be. So I ran in to put the radio on again, and then I said, oh no, that's when I called you, because I could hear it distinctly then, because I just thought maybe there's a problem with the app. You know how sometimes it gets
0: I know. देखिए, भगवान ने दो कान दिया है, ठीक है, ताकि दो चीजें आप सुन सके एक ही साथ। अब मैं क्या कहूँ दोस्तों, मेरा दिस वाज माय फॉल्ट। एनीवे, थैंक यू एमी फॉर, ओके, एटलीस्ट यू कॉल एंड लेट मी नो, ओके, थैंक यू सो मच, बाय। तो चलिए, अमिता, कल सुबह अमिता के साथ हम रहेंगे, प्रोग्राम करेंगे दोस्तों, तो आप कार्यक्रम जरूर सुनिएगा। और चलते हैं और इस गीत को सुनते हैं।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

जी हाँ दोस्तों, आवारा अभी आपने सुना दबंग का गीत, और बहुत प्यारा गीत, जितना भी हम सुनते हैं उतना ही अच्छा लगता है कि नहीं। इसी तरह एक और गीत है जो अरिजीत सिंह ने गाए, और 2018 का गाना है दोस्तों, आपको पता होगा शायद, अगर नहीं तो ये गाना सुनते हैं दोस्तों। तेरा फिक्र

और दोस्तों भूलना मत, इस कार्यक्रम के बाद में आप हो जाएंगे संगीत की जानकार टीम के साथ, आप कार्यक्रम सुनेंगे, कार्यक्रम जरूर सुनिएगा दोस्तों। उसके बाद में रोहित सिंह और फिर सुशीला, और फिर उसके बाद में आप हो जाएंगे शशि झोकन के साथ। आप कोशिश करेंगे दोस्तों, मैं जानता हूं कुछ हफ्तों से नहीं आ रहा है प्रोग्राम, लेकिन ये सब शायद ठीक हो गया होगा। सो शील बी ऑन अबाउट 5 o'clock, ठीक है। चलिए अगला जो गीत है, प्रेम रतन धन पायो का गीत है, सलमान खान और सोनम।

और चलिए दोस्तों, बातें कम क्योंकि समय बहुत कम है। 1 घंटा का प्रोग्राम, लेकिन 1 घंटा का आधा तो मालूम नहीं किधर गया, कुछ इधर गया कुछ उधर गया, कोई बात नहीं। और लेकिन लगता है रेडियो डर गया। खैर, आगे बढ़ते हुए दोस्तों, चलिए अगला जो गीत है, और इस गीत को अलका और उदित नारायण ने दोनों मिलकर इस गीत को गाए हैं दोस्तों, दिल का रिश्ता।

जी हाँ दोस्तों, दिल का रिश्ता बड़ा प्यारा है ऐश्वर्या राय और अर्जुन रामपाल के लिए। दिल का रिश्ता का गीत अभी आपने सुना दोस्तों, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं और आखिरी नगमा है, आखिरी गीत आप सभी के लिए इस प्रोग्राम का। अब फिर इसके बाद में आप फिरोज भाई के साथ हो जाएंगे, तो कार्यक्रम सुनते रहिए दोस्तों। लेकिन कल सुबह अमिता के साथ हम दोनों मिलकर प्रोग्राम लेकर आएंगे, तो कार्यक्रम सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और मिलेंगे कल सुबह। एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे, रेस्ट ऑफ द वीकेंड, और प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। ये सब बात तो आपको पता चल गया होगा, आजकल कानून बहुत सख्त है दोस्तों, और डोंट प्ले विद द लॉ। गाड़ी नहीं तो कुछ नहीं है कि नहीं, गाड़ी के बिना तो वैसे तो ट्रांसपोर्ट काफी सस्ता हो गया, 50 सेंट्स अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे। बहुत से लोग हैं भाई, जानता हूँ, जब जिनका लाइसेंस ऑफ हो गया और वो फिर जब से वो क्या बोलते हैं बस में ट्रेवल करने लगे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं यार यही ठीक है, मोटर रखना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 50 सेंट आप बताइए इससे सस्ता क्या हो सकता है। खैर चलो, ये ऑस्ट्रेलिया की बात है दोस्तों, क्वींसलैंड की, और या और जो सीनियर्स होते हैं उनके लिए फ्री ट्रेवल है एट द राइट टाइम्स, और अगर जो सीनियर्स गोल्ड कोस्ट वगैरह में हैं तो आपको वहाँ 50 सेंट लगेगा, ठीक है। तो चलो इसी के साथ हम यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों, और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। चलिए बहुत प्यारा गीत है, इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने, जब हैरी मेट कौन बताइए आप, चलो कल बताना, सहजल सहजल।

0: रेडियो ब्रिजवाणी 1701 ब्रिस्बेन।
1: रेडियो वो हो जिसमें महबूब का दम हो, रेडियो वो जिसमें महबूबा की सांसें हो, रेडियो वो जिसमें समाज सेवा हो।
2: यह है संगीत की जानकार और मैं हूं आपके साथी फिरोज खान। A very good morning to you all and welcome once again to Sangeet Kitchen Car on the station 1701 Brisbane. Your host Firoz Khan wishing you a very pleasant Sunday morning. Ek baar phir main hoon aapke saath Firoz Khan, chune hue lokpriya sangeet 40s 50s aur 60s se nikali